0: हेलो
1: हेलो।
0: हाँ जी कौन?
2: रवदीप
0: रवदीप? रवदीप कौन?
1: रवदीप कौन? रवदीप टॉप समाचार, रवदीप हॉट कलाकार, रवदीप हॉट अवतार, रवदीप।
0: हेलो, आवाज नहीं आती ब्रो।